0: अगला क्या जो सवाल है, ये बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी इससे गुजरना, और तब उस वक्त जब अभी अभी किसी की मृत्यु हुई और पूछे आप अगला क्या, वैसा महसूस होता है क्या क्या मतलब क्या अगला क्या। पर मेरे पिताजी दीपाली बिहार से पहली लड़की थे हम जो इंडियन आइडल में गए थे, तो मेरे पिताजी को काफी प्रेशर आया उनको ये पहले देख के, वो बिल्कुल हमको ऐसा हमको लगता है कि वो एकदम भौचक हो गए होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि ऐसे मेरी बेटी एयरपोर्ट, एक तो फ्लाइट वाले हम थे नहीं, हम ट्रेन वाले लोग थे, हम फ्लाइट से उतर के, क्योंकि इंडियन आइडल वालों ने फ्लाइट से भेजा है, और मेरे पिताजी इतनी मीडिया, इतने लोग, कुछ 200-250 लोग आ गए थे, फूल माला, और बच्चियां ऑटोग्राफ लेना चाहती थी, मेरे घर पे लड़के आते थे बाइक से और फूल फेंक के जाते थे। ये स्थिति जब हम मुंबई में चल रहा था तो ये स्थिति होने लगी थी। पटना में मेरे साइज का बुके आता था घर पे, मेरे साइज के सॉफ्ट टॉयज आने लगे थे, अखबार में छपने लगा कि दीपाली का फेवरेट मिठाई कौन सा है, तो वो लोग लेके घर आते थे इस उम्मीद पे कि दीपाली से मिलना हो जाएगा। तो इतना प्यार देख के अब तक मेरे पापा जो थे वो बैकफुट पे खेल रहे थे जीवन में, क्योंकि बिहार में पापा मेरे पुलिस वाले थे, उनके पास ज्यादा समय नहीं था। और हमको जो असल में जो मेरे पिता का रोल प्ले करते थे वो थे मेरे चाचा, मेरे जिनको हम बाबूजी बोलते थे।
1: अच्छा।
0: बाबूजी ही हम लोगों को मेरा म्यूजिक स्कूल लेके जाना आना, बाबूजी ही सब कुछ करते। बट जब ये दौर हुआ जहां पर अब हम बाहर जा रहे हैं, तो मेरे पिताजी फ्रंट फुट पे आए एयरपोर्ट पे और बोले दीपाली कुछ ही महीने में अब मुंबई शिफ्ट हो जाएगी और वहां जाकर हिंदी फिल्मों में गाना गाने की कोशिश करेगी।
1: उन्होंने एकदम बोल दिया,
0: पब्लिक अनाउंस कर दिया। और घर आने के बाद मेरे पापा मम्मी की हो गई लड़ाई।
1: हाँ।
0: आपने ऐसा किस बेसिस पे बोल दिया? अब तो आ गई थी ना वापस, हम तो कभी नहीं चाहते थे कि ये मुंबई जाए, हमको बहुत डर लगता है उस जगह से, हम तो चाह रहे थे कि ये पढ़ लिख के आईपीएस बन जाएगी, अभी भी छोटी है, अब तो शुरू हुआ है इसका, अब हार गई तो चलिए इसका भी शौक पूरा हो गया, इसको इंडियन आइडल में जाना था, हो गया ना, पूरा कर ली ना, टॉप 7 में आ गई, हो गया अब पढ़ाई करो। लेकिन अब तो हमको भी तो चस्का लग गया था ना, ये दुनिया हमने देख ली थी आंख से, हमने महसूस कर लिया था यहाँ जी के, ये जीवन तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पापा बोले कि नहीं, हम लोग तो अब तो भेजना ही पड़ेगा, इसके मुंबई बहुत महंगा शहर है, ये तो मेरे माँ बाप को अंदाजा लग गया था। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी थोड़ी सी उसको तोड़ा। 2 महीने बाद मेरे साथ मेरे पापा मम्मी मुंबई आए, मेरे लिए एक जगह देखी गई जहां पे हम रह सके। क्योंकि तब क्या होता है, तब शोज होने शुरू हो जाते हैं, आप ट्रैवल करने लगते हैं, तो पटना से बहुत फ्लाइट्स नहीं होती थी तब बहुत कम फ्लाइट्स होती थी, तो मुंबई रहना जरूरी था, क्योंकि हर 10वें दिन या एक हफ्ते में एक बार आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं शो करने जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग, ये नहीं जानते थे हम। बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे, एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे, और अकेले रह नहीं सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो,

0: जब पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं, क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था। ये स्थिति थी, जीवन वहां से पलट गया मेरा। दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है, हमको बहुत हर हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे पाला जाता है कि समाज कर देता है, माँ बाप
1: थोड़े
0: नहीं
1: में खुश रहना,
0: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, इतने में ही खुश है बेटी, हाँ ये बात तो सही है पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं। तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा। लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर,
1: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
0: एक अलग उड़ान शुरू हो गई।
1: लगातार शोज हो रहे थे और हर शो

0: में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था
1: और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए।
0: हाँ हाँ।
1: तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी।
0: बिल्कुल।
1: तो अब वो लड़की वो थी ही नहीं जो दीपाली पैदा हुई थी पटना में।
0: हाँ।
1: वहां से खेल बदलने लगा, कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा।
0: बिल्कुल। यहाँ कामयाबी भी आ रही थी, काम भी आ रहा था और जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी।
1: करेक्ट।
0: परिस्थितियों के मुताबिक बदलना, अपने आप को संभालना। यहाँ मैं आगे की बातचीत करने से पहले एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ, गंगा मैया तो है पीरी चढ़े हुए को गाना जो आप गाती हैं बहुत सारा। पहले वो गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा की बात करते हैं।
1: बिल्कुल। हाँ।

0: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। हालांकि एक चीज कही जाती है, इफ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, और ओपनिंग एक ऐसी चीज है भारत के लिए जो लगातार रिवॉर्ड्स दे रही है सभी।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जिसे मोमेंटम ब्रेक नहीं करना चाहिए, और जब आपकी ओपनिंग प्लेयर जो है जब आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे रहे हैं एज अ बैटर्स, वो जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान जैसे क्रंच गेम में है ना किसी भी तरीके के ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। और जब आप और विनिंग कॉम्बिनेशन जो आपके हैं जब वो परफॉर्म कर रहे हैं, और टीम जब बहुत दो अच्छी बड़ी विक्ट्री दर्ज करके आ रही है इस गेम में, तो और वैसे तो ऑलरेडी इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन जैसे उन्होंने सजेशन दिया है वो ठीक है, लेकिन टीम मैनेजमेंट भली भांति जानता है कि भले ही आपका पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा हो, 14-3 का रिकॉर्ड है, और आपने एशिया कप में भी वो डोमिनेंस दिखाई भी है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ गेम आता है तो एक अलग तरीके का प्रेशर तो रहता ही है, फील्ड पर भी रहता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी रहता है, और वो जो कहते हैं ना बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस वो रहती ही रहती है। और ये एक सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ ही नहीं, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ है, क्योंकि जीतने का जज्बा तो दोनों तरफ ही है, लेकिन एक जो भारी दबाव भी है जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर वो भी रहता है। तो ऐसे में कोचेज जो होते हैं, टीम मैनेजमेंट होता है, उनका यही होता है, मतलब ज़्यादा तवज्जो इसी चीज़ पे होती है कि वो इस मोमेंटम विनिंग कॉम्बिनेशन को बनाए रखें। और देखिए दोनों ही अटैकिंग प्लेयर हैं, स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा, और वो हमेशा से एक तेज तर्रार शुरुआत देती हैं। और प्रतिका के साथ जैसा हमने देखा है कि वो बहुत ही एक उनकी स्ट्रांग फाउंडेशन है, और वो इनिंग्स को बिल्ड करने की तरफ चलती हैं। तो जैसे हमेशा कहते हैं कि नंबर 3 और 4 आपका क्रूशल होता है, तो उनका वो रोल ठीक है। जब तक अभी तक जब वो स्मृति और शेफाली अच्छी शुरुआत दे ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि छेड़छाड़ की अभी ज़रूरत है।
2: और याद दिलाएं, आज इंडिया का जैसे कहा जाता है ट्रायल बाय स्पिन होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास 4 स्पिनर्स हैं, सादिया इकबाल, तुबा हसन, नशा संधु और उमी हानी। और लतिका, क्या अप्रोच आप रिकमेंड करेंगे कि इंडिया करे इन स्पिनर्स के अगेंस्ट? एग्रेसिव रहें या पिच के मुताबिक खेलें? क्योंकि हमें पता है शेफाली और स्मृति को तो एक तरह ही खेलना आता है, मगर बाकी मिडिल ऑर्डर जो प्रेशर में है उनके लिए क्या आपकी सलाह होगी?
3: देखिए, अभी तक हमने जितने भी मैचेस देखे हैं वहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हमने देखी हैं, जितने भी स्पिनर्स ने गेंदबाजी की है, चाहे आप हांगकांग की बात करें चाहे थाईलैंड की बात करें, तो कहीं ना कहीं मुश्किल ज़रूर खड़ी की है भारतीय बल्लेबाजों के सामने। और यहाँ पर जब वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे पिछली बार, तो वहाँ पर भी इन स्पिनर्स ने अच्छा खासा दबाव जो है भारतीय टीम पर बनाया था। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से हमारे ओपनर्स तो अच्छा खेल ही रहे हैं, उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर क्या होगा। और मैं फिर से वही कहूँगी कि आप मिडिल ऑर्डर्स में जो भी बड़े नाम हैं, चाहे प्रतिका रावल हैं, हरमन हैं, ऋचा घोष हैं, दीप्ति शर्मा हैं, आप इनको किस नंबर पे भेजना चाहते हैं, वो एक क्रूशियल स्थिति आ जाती है। क्योंकि जो ये स्पिनर्स हैं बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं, आप किसी की भी बात कर लीजिए, संधु हो गई या इकबाल हो गई, तो ये सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। वर्ल्ड कप में इन्होंने बेहतर जो है गेंदबाजी भी की, अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड कप में अच्छी खासी इन्होंने विकेट्स भी लिए हैं वहाँ पर, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर इनका हाई होगा। और यही रीज़न है कि भारतीय टीम को जो है इन्होंने चेज पे डाला है, क्योंकि यहाँ पर अभी मिडिल ऑर्डर से थोड़ा सा परेशान है भारतीय टीम, और इनके पास बेहतर स्पिन अटैक भी है। तो मैं यही कहूँगी कि आज बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हरमन किस नंबर पे आएंगी, दीप्ति किस नंबर पे आएंगी, ऋचा घोष किस नंबर पे आएंगी, तो वहाँ पर हम थोड़ा बहुत इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं इनके स्पिनर्स को।
0: और सभी अगर वही भारतीय स्पिनर्स का यहाँ पर जिक्र करें, दुबई में खास करके हमने देखा है कि जो भी स्पिनर ज़्यादा फ्लाइट देने की कोशिश करती हैं या फिर ज़्यादा वहाँ पर ब्रेवरी दिखाती हैं, उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे दुबई का है स्लो सरफेस है, और ट्रेडिशनली उन्होंने स्पिनर्स को सपोर्ट भी किया है। तो मैं अगर मैं देखूँ इस मुकाबले को, तो इट्स लाइक कि इंडियाज बैटिंग वर्सेज पाकिस्तान स्पिनर्स, और पाकिस्तान के स्पिनर्स चाहेंगे वो जो ग्रिप दी बॉल एंड काइंड ऑफ रन रेट को स्लो करना चाहेंगे, जो उनकी अप्रोच रहेगी खासतौर से। और अगर हम इंडिया की देखिए, इंडिया की बैटिंग जो है वो हमेशा से उनकी वो स्ट्रेंथ है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ तक है कि इंडिया चाहेगा कि अभी जैसे पाकिस्तान जब पहले बैटिंग कर रही है, तो जो बॉलर्स हैं लेड बाय दीप्ति शर्मा को, कि दीप्ति शर्मा बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई हैं, तो किसी तरीके से भी उनको कम स्कोर पे रोका जाए। क्योंकि देखिए चेज करने पे एक है ना, चेज में वो फैक्टर ज़रूर रहता है कि आप है ना हमेशा एक है ना रन रेट के प्रेशर में रहते हैं, और कभी कभी एक दो विकेट्स आप जल्दी खो देते हैं, जो कि पाकिस्तान को चाहेगा भी कि है ना उनके जो 4 स्पिनर्स हैं, जो लतिका जी भी बता रही थी कि बहुत ही अच्छे

0: वो लय में भी हैं और वो भारत के मिडिल ऑर्डर को वो है ना जो उसको देखेंगे कि टेस्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे यही रहेगा कि भारत की अभी उम्मीदें कि जो हमारी जो बॉलिंग है वो अच्छा परफॉर्म करे ताकि पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर सके कम स्कोर पे, जो कि मुझे लगता है कि शायद वो करने में सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत नहीं देनी है। और इसके साथ ही ये भी चाहेगी भारत कि जब वो चेस करने पर आए तो हमेशा की तरह स्मृति और शेफाली भी जो है अच्छा परफॉर्म करे। तो जो मुझे लगता है कि ये इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान का स्पिनर्स ये एक मैच होने वाला है।
1: ज़रूर। और इंडिया के बारे में बात करा जाए, इंडियन बॉलिंग के जिसको आप देख सकते हैं कुछ ही देर एक्शन में, प्रेमा रावत और नंदनी शर्मा, इन दोनों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन करा है। प्रेमा रावत 2 विकेट्स पिछले मैच में और नंदनी शर्मा 5 विकेट्स। एंड लतिका, इन दोनों की वजह से, इनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर को टीम में जगह नहीं मिल रही। तो आपको लग रहा है कि प्रेमा और नंदनी में इतना पोटेंशियल है कि इंडियन टीम के ये मेन स्टेज बन सकते हैं?
2: देखिए बिल्कुल, और वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है कि इनको किस तरीके से बैक किया गया है। प्रेमा रावत को बाद में बुलाया गया था, उन्होंने वहाँ खेला, इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा लेकिन वो कॉन्फिडेंस जरूर मिला जिसकी झलक हम इस एशिया कप में उनसे देख रहे हैं। और अगर पेस अटैक की हम बात करें तो वर्ल्ड कप में भी अगर नंदनी से ही हमें जो विकेट आई थी या रन हमारे रुके थे वो नंदनी के ही स्पेल में अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। और थोड़ी सी चिंता की बात थी उस टाइम पर कि हमारे पेस अटैक जो है ना इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, लेकिन इस एशिया कप में काम करके आई है टीम, उन्होंने अच्छा वर्क किया है मैनेजमेंट ने, सपोर्ट स्टाफ ने, तो क्रांति गौड भी जो है विकेट ले पा रही हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रही हैं। तो यही हम देखना चाहेंगे कि आज के मैच में हमारा पेस अटैक किस तरीके से गेंदबाजी करता है। वहीं पिछली बार मैंने प्रेमा रावत को गेंदबाजी करते हुए देखा था तो उनके हाथ से जो गेंद है वो इस तरीके से नहीं निकल रहा था कि जो ड्रिफ्ट कर पाए या किसी तरीके से बल्लेबाज को परेशान कर पाए, लेकिन पिछले 2 मैचेस में हमने देखा कि उनकी गेंद बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है रिलीज हो रही है, बल्लेबाजों को परेशान कर रही है और ऑन स्टंप जो है वो टारगेट करके गेंदबाजी कर रही है। तो एक एक अच्छा साइन होता है कि आप किसी चीज़ पे काम करके आते हैं, वो एग्जीक्यूशन में आती है और मैचेस में आपको विकेट्स भी दिला रही हैं वहाँ पर। तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान के बल्लेबाज, क्योंकि प्रेमा रावत जैसे यंगस्टर्स जो अब टीम में आए हैं और मैनेजमेंट उनको बैक कर रहा है, तो इनकी परफॉर्मेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए रेणुका सिंह की बात करो या राधा यादव की बात करो, उन्होंने भी बहुत अच्छी जो है गेंदबाजी की है, लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो किस तरीके से ये यंगस्टर्स आके अपफ्रंट आके यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको क्रिकेट का फ्यूचर भी देखना है कि आप किस तरीके से टीम में वो एक कह सकते हैं कि मिश्रण बनाएंगे, कि बैलेंस किस तरीके से रखेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे यंगस्टर्स के लिए यहाँ पर कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं।
3: और पेस डिपार्टमेंट में खास करके कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन नहीं देखने को मिला था विश्व कप में, हालांकि अभी तक एशिया कप में भारत ने बैक किया है अपने खिलाड़ियों को। और नंदनी पर अगर ध्यान केंद्रित करें तो सबसे पहले तो अपफ्रंट उन्हें मूवमेंट मिल रहा है और उसके बाद जब दूसरे स्पेल में आती है तो जिस तरह से स्लो वंस का इस्तेमाल करती है वो सभी।
0: नहीं बिल्कुल, जैसे नंदनी का है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहेगा, जैसे लतिका जी ने भी कहा कि मतलब कि अपफ्रंट उनको है ना वो ब्रेक थ्रूज दिलाने पड़ेंगे और उनको वो उस तरीके की वो लय में भी दिख रही हैं, हृदय में भी दिख रही हैं। तो नंदनी से काफ़ी अपेक्षाएं रहेंगी कि मतलब कि वो अच्छी शुरुआत मतलब विकेट्स निकाले। लेकिन हम एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बात करना चाहेंगे, वो है श्रीचरणी। श्रीचरणी का तो हमने देखा है कि वो इस साल 2026 में इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर हैं 30 विकेट्स के साथ। तो श्रीचरणी ने पिछले मैच में भी 2 विकेट निकाले थे 16 रन पे। तो किस तरीके से ये श्रीचरणी जो हैं ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक की बॉलर हैं इंडिया की, और उनका भी जो दीप्ति के साथ जो वो कॉम्बिनेशन है इट कुड बी लेथल। तो ये जो हरमनप्रीत का भी रहेगा कि अगर अपफ्रंट अगर वो पेसर्स विकेट नहीं निकाल पाते तो वो जल्द से जल्द श्रीचरणी और दीप्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी इस ताकि है ना पाकिस्तान के विकेट्स निकाले जा सके। तो इस श्रीचरणी पर भी काफ़ी निगाहें रहेंगी कि वो भी, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हो, क्योंकि वो है ना वो भी रन रेट स्लो करती हैं और विकेट्स निकालती, क्रूशल ब्रेक थ्रू दिलाती हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि अगर अपफ्रंट आपको वो सफलता नहीं मिल पाती तो श्रीचरणी और दीप्ति फिर कैसा परफॉर्म करती हैं।
3: जी बिल्कुल।
1: और आपने बात करी सभी श्री चन्नी और दीप्ति शर्मा के कॉम्बिनेशन के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने 8 विकेट

0: हमें दिलाए थे वर्ल्ड कप मैच में. दीप्ति ने 5 विकेट्स लिए थे, बस 10 रन कंसीड करे थे. तो लतिका, आपको लगता है कि आज दीप्ति के अगेंस्ट पाकिस्तान अपनी अप्रोच थोड़ी सी चेंज करेगा, क्योंकि वो दिमाग में तो होगा वो 5 विकेट हॉल वर्ल्ड कप का?
1: देखिए, मैं कहती हूँ क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और हर दिन नया होता है. तो आज किस तरीके से दोनों टीमें यहाँ पर खेलेंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम एक अच्छा क्रिकेट यहाँ देखना चाहेंगे दोनों ही टीमों से, और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये टीम्स उभर के आती हैं अब एशिया कप में.
2: जी बिल्कुल, और सभी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी जिनका जिक्र करना जरूर बनता है, फातिमा सना. शी इज बीन लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट. हालांकि थाईलैंड के विरुद्ध 0 पर आउट हो गई थी, लेकिन विमेंस 100 का अनुभव लेकर आ रही हैं, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है.
3: बिल्कुल, फातिमा सना के बारे में कहेंगे कि जैसे वो हरमनप्रीत के साथ है वैसे वो भी अपनी टीम को बखूबी लीड कर रही है, और टॉस जीत के जैसे उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया. तो फातिमा सना से भी पाकिस्तान की बैटिंग को काफ़ी उम्मीदें रहेंगी, और जब इंडिया चेस करने आएगी तो एज अ कैप्टन भी रहेगा कि किस तरीके से वो रिसोर्सेज अपना यूज़ करती हैं, किस तरीके से वो अपने बॉलर जो स्पिनर्स उनको यूज़ करते हैं. तो फातिमा सना जैसे हमारे लिए हरमनप्रीत और स्मृति मंदाना आर दी वाइटल कॉग्स, वैसे फातिमा सना पाकिस्तान की वाइटल कॉग है.
2: जी बिल्कुल, काफी युवा खिलाड़ी हैं लेकिन बहुत प्रभावित किया है. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, यहाँ पर आपने अपनी जो विशेष टिप्पणी और विश्लेषण दिया, और अभिनव आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी के साथ वक्त हो चला है लाइव एक्शन से जुड़ने का, जहां दो पाकिस्तानी ओपनर्स मुनीबा अली और जुल्फिकर तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए. और वही भारतीय गेंदबाजी जो इस एशिया कप में काफी प्रभावित करते आई है, वो भी चाहेगी कि पाकिस्तान को जल्दी और कम रनों पर सिमटा दे. तो चलते हैं लाइव एक्शन की तरफ.
4: फर्स्ट बॉल 20.
5: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
6: नमस्कार, सुस्वागतम, शुभ संध्या. आज महिला एशिया कप T20 2026 का नवा मुकाबला और बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमें आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने हैं. ये टूर्नामेंट का 9वां मैच है और भारत का इस टूर्नामेंट का 3रा मैच. भारत ने इससे पहले के दोनों मैच जीते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारत ने तीनों में से किसी भी मैच में टॉस नहीं जीता है. आज फिर से भारतीय टीम टॉस नहीं जीत सकी है, और आज पहली बार टूर्नामेंट में भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा. मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश, मेरे साथ अंग्रेजी कमेंटेटर डॉक्टर मिलिंद टिपनेस, स्कोरर भागवत सिंह रावत, स्टैटिस्टिशियन प्रवीण प्रदीप कुमार तुम्बे, हम सभी आपका स्वागत करते हैं. और पहली गेंद डालने की तैयारी हो रही है भारत के. जहां तक पिछले दो मैचों की बात है, ग्रुप ए में भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था, जिसमें शेफाली वर्मा ने 64 रन की धुआंधार पारी खेली थी, और स्मृति मंदाना ने दूसरे मैच में कमाल किया था जब भारत ने हांगकांग को 137 रन से हराया, तब स्मृति मंदाना ने 64 गेंदों में 124 रन बनाए थे. जहां तक दोनों टीमों के बीच T20 में अब तक खेले गए मुकाबलों की बात है, 17 मैच दोनों टीमों ने खेले हैं आपस में, जिसमें से भारत का दबदबा पूरी तरह से रहा है, और भारत ने इन मुकाबलों में से सबसे ज़्यादा जीत हासिल की है. एशिया कप में दोनों टीमों के बीच 7 मैच खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 6 मैच जीते हैं, पाकिस्तान 1 मैच जीता है. और ख़ास बात ये कि पिछले 4 मैच जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए, 4 मैच भारत ने जीते हैं. पाकिस्तान ने भारत से पिछला T20 मुकाबला 2022 में एशिया कप में ही जीता था, और तब से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ T20 मुकाबले में जीत का इंतजार है. मुनीबा अली और शवाल जुल्फिकार मैदान पर आ चुकी हैं पाकिस्तान की पारी का आगाज करने के लिए, और भारतीय पारी आज गेंदबाजी के लिए पहली बार मैदान में उतरी है. इससे पहले जो 2 मुकाबले खेले गए दोनों में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, तो आज भारतीय गेंदबाजी की भी परीक्षा होगी. पूरे मौके भारतीय गेंदबाजों को पिछले 2 मैचों में कहें तो वास्तविक रूप से नहीं मिल सके थे. और मेरे साथ डॉक्टर मिलिंद टिपनेस. डॉक्टर मिलिंद, आज बहुत बड़ा मैच है, हालांकि मैच का महत्व भारत के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है उसका रोमांच और उसकी जो है खासियत खास हो जाती है.
7: गुड इवनिंग धर्मेंद्र मणि राजेश, एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल क्रिकेट फैंस व्हेरेवर यू आर इन द कंट्री.

0: listening to this broadcast. So Pakistan winning the toss, selecting to bat, and for the third time, India losing the toss.
1: और पहली गेंद इस मुकाबले की ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर थी, हालांकि इस गेंद पर बल्लेबाज ने निगाह नहीं डाली, लेकिन अतिरिक्त के रूप में एक रन पाकिस्तान की झोली में आया है, वो रन वाइड के रूप में आया है। क्रांति गौड़ की गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर पिच भी हुई और छोड़कर बैटर को पूरी तरह से बाहर निकल रही थी, निगाह तक नहीं डाली थी। बहुत ज़्यादा समर्थन भारत के लिए दिखाई दे रहा है इस मुकाबले में।
2: एक मनुष्य का ढांचा यानी कि हड्डियों का पिंजर मंगवा दिया था, जो उस कमरे में रखा गया जहां मैं पढ़ता था। साधारण व्यक्ति जानते हैं कि मुर्दा विशेषतः हड्डियों के पिंजर से कम आयु वाले बच्चों को जब वे अकेले हों कितना अधिक भय लगता है। स्वभावतः मुझको भी डर लगता था और आरंभ में मैं कभी उस कमरे में अकेला जाता था। यदि कभी किसी आवश्यकतावश जाना भी पड़ता तो उसकी ओर आंख उठाकर न देखता था। एक और विद्यार्थी भी मेरा सहपाठी था जो बहुत निर्भय था। वो कभी उस पिंजर से भयभीत न होता था और कहा करता था कि इस पिंजर की सामर्थ्य ही क्या है जिससे किसी जीवित व्यक्ति को हानि पहुंच सके। अभी हड्डियां हैं, कुछ दिनों पश्चात मिट्टी हो जाएंगी। किंतु मैं इस विषय में उससे कभी सहमत न हुआ और सर्वदा यही कहता रहा कि ये मैंने माना कि आत्मा इन हड्डियों से विलग हो गई है, तब भी जब तक ये विद्यमान है वो समय असमय पर आकर अपने पुराने मकान को देख जाया करती है। मेरा ये विचार प्रकट में अनोखा या असंभव प्रतीत होता था और कभी किसी ने ये नहीं देखा होगा कि आत्मा फिर अपनी हड्डियों में वापस आई हो। किंतु ये एक अमर घटना है कि मेरा विचार सत्य था और सत्य निकला। कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक रात को गृहस्थ आवश्यकताओं के कारण मुझे उस कमरे में सोना पड़ा। मेरे लिए ये नई बात थी, इसलिए नींद न आई और मैं काफी समय तक करवटें बदलता रहा, यहाँ तक कि समीप के गिरजाघर ने 12 बजाए। जो लैंप मेरे कमरे में प्रकाश दे रहा था वो मध्यम होकर धीरे धीरे बुझ गया। उस समय मुझे उस प्रकाश के संबंध में विचार आया कि क्षण भर पहले वो विद्यमान था किंतु अब सर्वदा के लिए अंधेरे में परिवर्तित हो गया। संसार में मनुष्य जीवन की भी यही दशा है, जो कभी दिन और कभी रात के अनंत में जा मिलता है। धीरे धीरे मेरे विचार पिंजर की ओर परिवर्तित होने आरंभ हुए। मैं हृदय में सोच रहा था कि भगवान जाने ये हड्डियां अपने जीवन में क्या कुछ न होंगी। सहसा मुझे ऐसा ज्ञात हुआ जैसे कोई अनोखी वस्तु मेरे पलंग के चारों ओर अंधेरे में फिर रही है। फिर लंबी सांसों की ध्वनि जैसे कोई दुखित व्यक्ति सांस लेता है मेरे कानों में आई और पांवों की आहट भी सुनाई दी। मैंने सोचा ये मेरा भ्रम है और बुरे स्वप्नों के कारण काल्पनिक आवाजें आ रही हैं। लेकिन पांव की आहट फिर सुनाई दी। इस पर मैंने भ्रम निवारण हेतु उच्च स्वर से पूछा, कौन है, कौन है यहाँ? ये सुनकर वो अपरिचित शक्ल मेरे समीप आई और बोली, मैं अपने पिंजर को देखने आई हूँ। मैंने विचार किया मेरा कोई परिचित मुझसे हंसी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा, ये कौन सा समय पिंजर देखने का है? वास्तव में तुम्हारा अभिप्राय क्या है? ध्वनि आई, मुझे असमय से क्या अभिप्राय, मेरी वस्तु है, मैं जिस समय चाहूं इसे देख सकती हूँ। आह, क्या तुम नहीं देखते, ये मेरी पसलियां हैं जिनमें वर्षों मेरा हृदय रहा है। मैं पूरे 26 बरस इस घोंसले में बंद रही जिसको अब तुम पिंजर कहते हो। यदि मैं अपने पुराने घर को देखने चली आई तो इसमें तुम्हें क्या बाधा हुई? मैं डर गया और आत्मा को टालने के लिए कहा, अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाकर अपना पिंजर देख लो, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। मैंने हृदय में निश्चय कर लिया कि जिस समय वो यहाँ से हटे मैं तुरंत भागकर बाहर चला जाऊंगा। लेकिन वो टलने वाली न थी, कहने लगी, क्या तुम

अकेले सोते हो? अच्छा, आओ कुछ बातें करें। उसका आग्रह मेरे लिए व्यर्थ की विपत्ति से कम न था। मृत्यु की रूपरेखा मेरी आंखों के सामने फिरने लगी, लेकिन विवशता से उत्तर दिया, अच्छा तो बैठ जाओ और कोई मनोरंजक बात सुनाओ। आवाज आई, लो सुनो। 25 बरस बीते, मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य थी, और मनुष्यों में बैठकर

समय के पश्चात मनुष्यों से बात करूं। मैं प्रसन्न हूं कि तुमने मेरी बातें सुनने पर सहमति प्रकट की है। क्यों, तुम बातें सुनना चाहते हो या नहीं? ये कहकर वो आगे की ओर आई और मुझे मालूम हुआ कि कोई व्यक्ति मेरे पांव के पास बैठ गया है। फिर इससे पूर्व कि मैं कोई शब्द मुख से निकालूं, उसने अपनी कथा सुनानी आरंभ कर दी। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं सुनो कहानी। आज रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर। वो बोली, महाशय, जब मैं मनुष्य के रूप में थी तो केवल एक व्यक्ति से डरती थी और वो व्यक्ति मेरे लिए मानो मृत्यु का देवता था। वो था मेरा पति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मछली को कांटा लगाकर पानी से बाहर ले आया हो, वो व्यक्ति मुझको मेरे माता पिता के घर से बाहर ले आया था और मुझे वहां जाने न देता था। अच्छा था उसका काम जल्दी ही समाप्त हो गया, अर्थात विवाह के दूसरे महीने ही वो संसार से चल बसा। मैंने लोगों की देखा देखी वैष्णो रीति से क्रियाकर्म किया, लेकिन हृदय में बहुत प्रसन्न थी कि कांटा निकल गया। अब मुझको अपने माता पिता से मिलने की आज्ञा मिल जाएगी और मैं अपनी पुरानी सहेलियों से, जिनके साथ खेला करती थी, मिलूंगी। लेकिन अभी मुझको मायके जाने की आज्ञा न मिली थी कि मेरा ससुर घर आ गया और मेरा मुख ध्यान से देखकर अपने आप कहने लगा, मुझको तो इसके हाथ और पांव के चिन्ह देखने से मालूम होता है कि ये लड़की डायन है, डायन। अपने ससुर के वे शब्द मुझको अब तक याद है, वे मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसके कुछ दिनों बाद मुझे अपने पिता के यहां जाने की आज्ञा मिल गई। पिता के घर जाने पर मुझे जो खुशी प्राप्त हुई वो वर्णन नहीं की जा सकती। मैं वहां प्रसन्नता से अपने यौवन के दिन व्यतीत करने लगी। मैंने उन दिनों अनेकों बार अपने विषय में कहते हुए सुना कि मैं सुंदर युवती हूं, पर तुम कहो, सुनो, तुम कहो ना, तुम्हारी क्या सम्मति है? मैंने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें जीवित देखा ही नहीं, मैं कैसे सम्मति दे सकता हूं? जो कुछ तुमने कहा ठीक होगा, ठीक। वो बोली, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि इन दो गढ़ों में लज्जाशील दो नेत्र देखने वालों पर बिजलियां गिराते थे। खेद है कि तुम मेरी वास्तविक मुस्कान का अनुमान इन हड्डियों के खुले मुखड़े से नहीं लगा सकते। इन हड्डियों के चहुओर जो सौंदर्य था, अब उसका नाम तक बाकी नहीं है। मेरे जीवन के क्षणों में कोई योग्य से योग्य डॉक्टर भी कल्पना न कर सकता था कि मेरी हड्डियां मानव शरीर की रूपरेखा के वर्णन के काम आएंगी। मुझे वो दिन याद है जब मैं चला करती थी तो प्रकाश की किरणें मेरे एक एक बाल से निकलकर प्रत्येक दिशा को प्रकाशित करती थी। मैं अपनी बाहों को घंटों देखा करती थी। ये वही बाहें थीं जिसको मैंने दिखाई, अपनी ओर आसक्त कर लिया। संभवतः सुभद्रा को भी ऐसी बाहें नसीब न हुई होंगी। मेरी कोमल और पतली उंगलियां मृणाल को भी लजाती थीं। खेद है कि मेरे इस नग्न ढांचे ने तुम्हें मेरे सौंदर्य के विषय में सर्वथा झूठी सम्मति निर्धारित करने का अवसर दिया। तुम मुझे यवन के क्षणों में देखते तो आंखों से नींद उड़ जाती और वैदिक ज्ञान का सौदा मस्तिष्क से अशुद्ध शब्द की भांति समाप्त हो जाता। उसने कहानी का तारतम्य प्रवाहित करते हुए कहा, और फिर मेरे भाई ने निश्चय कर लिया था कि वो विवाह न करेगा और घर में मैं ही एक स्त्री थी। मैं संध्या समय अपने उद्यान में

छाया वाले वृक्षों के नीचे बैठती तो सितारे मुझे घूरा करते और शीतल वायु जब मेरे समीप से गुजरती तो मेरे साथ अटखेलियां करती थी। मैं अपने सौंदर्य पर घमंड करती और अनेकों बार सोचा करती थी कि जिस धरती पर मेरा पांव पड़ता है यदि उसमें अनुभव करने की शक्ति होती तो प्रसन्नता से फूली न समाती। कभी कहती संसार के संपूर्ण प्रेमी युवक घास के रूप में मेरे पैरों पर पड़े हैं। अब ये संपूर्ण विचार मुझको अनेक बार विफल करते हैं कि आह क्या था और अब क्या हो गया। मेरे भाई का एक मित्र सतीश कुमार था जिसने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वो हमारा भी घरेलू डॉक्टर था। वैसे उसने मुझको नहीं देखा था लेकिन मैंने उसको एक दिन देख ही लिया और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं कि उसकी सुंदरता ने मुझ पर विशेष प्रभाव डाला। मेरा भाई अजीब ढंग का व्यक्ति था। संसार के शीत ग्रीष्म से सर्वथा अपरिचित वो कभी गृहस्थ के कामों में हस्तक्षेप न करता। वो मौन प्रिय और एकांत में रहा करता था जिसका परिणाम ये हुआ कि संसार से अलग होकर एकांत प्रिय बन गया और साधु महात्माओं का सा जीवन वो बिताने लगा।

दोस्तों हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। आज आप सुन रहे थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पिंजर का पहला भाग। इसका दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को सुनो कहानी में। कहानी में वाचन स्वर था आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म मैं वापस आऊँगा से, आवाज़ शिल्पा राव, अंतरानंदी, फहीम अब्दुल और इरशाद कामिल की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म रेड 2 से। आवाज़ें परंपरा टंडन और सचेत टंडन की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचेत परंपरा का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू।

0: पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
1: मैं निकला ओ कटी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
3: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
4: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
4: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म आंखों की गुस्ताखिया से, आवाज विशाल मिश्रा की थी। गीत के बोल और संगीत विशाल मिश्रा का ही था।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली हुई कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: थोड़ी देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है।

0: है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो घड़े हुए निकले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणादायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्री बाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल

0: स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
4: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
5: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
4: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
5: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson

0: aair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की

0: हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं, कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: The president asserted that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our constitution. She also recalled Savitribai Phule's pivotal role in advancing women's rights and education.
0: Savitribai Phule, आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ।
1: On Teachers Day, Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary honored 37 teachers with the State Teachers Awards at a function in Patna. Mr. Chaudhary said the state government is committed to providing quality education to students and better facilities to teachers. This is Akashwani giving you the news.
2: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
1: Welcome back. You're with us on the news.

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म साथिया से। आवाज़ सोनू निगम की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत AR रहमान का।
1: धरती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आप सुन रहे हैं फिल्म रोजा से, आवाज़ एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की, गीत के बोल पीके मिश्रा के और संगीत एआर रहमान का।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्रामिंग चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने के यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्हें कोठे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: झीलों के शहर में रहने का ख्वाब कितना मीठा और सुहाना होता है ये तो आपने सुना, लेकिन ये भी आपको बता दें कि विधु विनोद चोपड़ा मूल रूप से कश्मीर के ही हैं, इसीलिए शायद इनकी फिल्मों में हसीन वादियों की लोकेशन ज्यादा होती हैं।
1: और पढ़ाई लिखाई भी वहां हुई, कॉलेज भी वहां हुआ, अगर सही मानों में आप कहें तो कश्मीरी हूं मैं, कश्मीर से हूं और कश्मीर में ही मेरी कश्मीर के बाद मैं सीधा फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में गया था।

मैं ये बात मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान में हर छोटे शहर में हर छोटा लड़का या हिंदी फिल्म का हीरो बनना चाहता है या क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दो ही हीरो हैं, या तो क्रिकेट प्लेयर्स हैं या हिंदी फिल्म के हीरो हैं।

हर बच्चे की तरह, छोटे शहर के बच्चे की तरह, मेरा भी एक ही सपना था कि मैं फिल्मों में कुछ करूं, और हिंदी फिल्मों में, और वहाँ कश्मीर में सिर्फ हिंदी फिल्म देखने को मिलती थी। और मैं पढ़ाई में बहुत तेज था, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट हूँ, इकोनॉमिक्स में मैं टॉप किया हूँ, यूनिवर्सिटी नेशनल स्कॉलर ऑफ इंडिया हूँ। लेकिन बचपन से, और जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, मैं माफ कीजिए आगे जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जो कहना चाहूँगा आपसे, तो मुझसे ऋषिकेश मुखर्जी ने पूछा कि आप तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हैं इकोनॉमिक्स में, कैम्ब्रिज जाना चाह रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आप फिल्म इंस्टीट्यूट क्यों आए? तो मैंने उनसे कहा क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ। पूछा कि ये हर लड़का जो फिल्म इंस्टीट्यूट में आता है पढ़ाई के लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो बेवकूफ है? मैंने कहा नहीं, अगर उस लड़के के पास कैम्ब्रिज में पीएचडी करने की चॉइस हो, और एफटीआईआई से डीसीडी डिप्लोमा इन सिनेमा की चॉइस हो, और वो ऑप्ट करें यहाँ आना, तो वो बेवकूफ ही नहीं, गधा है बिल्कुल। तो फिर ऋषिदा ने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि आप गधे क्यों बन रहे हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो बचपन में मेरी एक चाइल्डहुड फैंटेसी थी, जो एक ख्वाब था, मैं जो जितनी मेरी रैशनल सेंसेस हैं उनको ओवर रूल करके यहाँ आया हूँ। मतलब मैं बिल्कुल सोच नहीं रहा हूँ इस बात को, मैं सिर्फ दिल और जज्बात से ये डिसीजन ले रहा हूँ।

दोस्तों, विनोद चोपड़ा का घरेलू नाम है विधु, जिसको मिलाकर ये कहलाए विधु विनोद चोपड़ा। यदि आपने इनकी कोई फोटो या तस्वीर देखी

0: तो निश्चित ही आप भी मानेंगे कि ये काफी हैंडसम हैं। लेकिन इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर फिल्म निर्माण और निर्देशन की बागडोर ही क्यों संभाली, इसका भी एक राज है।
1: मैंने अपनी जो डिप्लोमा फिल्म थी मर्डर एट मंकी हिल में, उसमें मैं हीरो था, लेकिन मुझे बिल्कुल एक्टिंग करके मजा नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं। हो मुझे तो ऐसा लगता था उस समय भी और आज भी कि एक्टर्स जो हैं, ये ठीक है कि मैगजीन्स में उनकी फोटो छपती है, लोग कहते हैं वाह, लेकिन हैं वो सिर्फ पपेट्स हैं बिल्कुल। उनके धागे तो किसी और के हाथ में, जैसे आनंद में उसने बहुत कमाल की लाइन गुलजार भाई ने लिखी थी कि धागे ऊपर वाले के हाथ में, तो यहां धागे जो हैं उन एक्टरों के, वो हमारे हाथ में।

विधु विनोद चोपड़ा ने बहुत ही चुनिंदा फिल्में बनाई हैं। फिल्मकार के रूप में उनका नजरिया लीक से हटकर है, अपनी बात को फोकस करने का उनका अपना अंदाज है। 1942 ए लव स्टोरी से ही उन्होंने ये बात साबित कर दी थी।

विधु विनोद चोपड़ा ने जब फिल्मों में आना तय किया तभी ये सोच लिया था कि फिल्म मनोरंजन का मीडिया तो है लेकिन इसका उपयोग अपनी बात कहने के लिए कैसे किया जाए इस बात में सावधानी बरती जाए तो यकीनन फिल्मों का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। आपको याद होगा कि उनकी हर फिल्म में एक नया विषय जरूर होता है, चाहे वो फिल्म मिशन कश्मीर हो, 42 ए लव स्टोरी हो, परिंदा हो या हो करीब, सभी में एक नया एहसास उनकी फिल्मकारी का आपको जरूर मिलता है।

मुन्ना भाई MBBS। इसके मुख्य चरित्र को लेकर उन्होंने कई समस्याओं को फिल्म के माध्यम से हमारे सामने पेश किया है। लोगों ने उनके बात कहने के इस अंदाज को भी बहुत बहुत पसंद किया है।

मुन्ना भाई एमबीबीएस के बाद लगे रहो मुन्ना भाई ने भी काफी लोगों को प्रेरित किया, इंस्पायर किया और ये फिल्म भी एक मिसाल बन गई।

0: और दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी थ्री इडियट्स, देखी होगी आपने और मजा भी लिया होगा।
1: आउट ऑफ कंट्रोल, आउट टोको करके गोल।

0: आज का ये प्रोग्राम आज के फनकार केंद्रित था निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा पर, संपादन और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

रात के शांत आकाश में टंगा चांद किसी प्रेम पत्र की तरह लगता है, जिसे प्रकृति ने हर प्रेमी के नाम लिखा हो। उसकी दूध या रोशनी मन की बेचैन लहरों को सहला देती है। जब कोई अपने प्यार को याद करता है तो सबसे पहले उसकी निगाहें चांद की ओर उठती हैं, मानो चांद दूर बैठे उसके प्यार तक उसके दिल का हाल पहुंचा देगा।

जब ये रात अपने आंचल में सितारों के असंख्य दीपक सजा लेती है और चांद चुपके से आसमान की चौखट पर आ बैठता है, तो उसकी चांदनी इस जमी के साथ साथ प्रेम करने वालों के दिलों पर भी उतरती है। वो हर धड़कन से कहती है, सच्चा प्रेम आकाश की तरह असीम है और चांद की तरह हर अंधेरी रात में झिलमिलाती रोशनी का समंदर बनकर लौट आता है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। कभी ये चांद किसी के चेहरे का रूप बन जाता है तो कभी किसी की याद का, कभी वो मिलन की रात का गवाह होता है तो कभी जुदाई की लंबी रातों का हमसफर। मगर उसकी चांदनी हर बार यही कहती है, मोहब्बत दूरियों से नहीं हारती, वो तो इंतजार से और भी गहरी हो जाती है।

खोता नहीं, बस कुछ समय के लिए आंखों से ओझल हो जाता है, वैसे ही सच्चा प्रेम भी परिस्थितियों के बादलों में छिप सकता है लेकिन मिटता कभी नहीं।

चांद की तरह है। वो हर दिन एक सा नहीं रहता। कभी पूर्णिमा की उजली मुस्कान बनकर जीवन को आलोकित कर देता है, तो कभी अमावस्या की खामोशी में भीतर ही भीतर धड़कता रहता है। पर जैसे चांद बादलों भरी रात में भी कभी

कहते हैं इश्क अगर सच्चा हो तो प्रेमियों की आंखों में चांद उतर आता है और चांदनी उनकी मुस्कान में खिल उठती है। मोहब्बत अगर चांद है तो विश्वास उसकी चांदनी है। चांद कभी कभी बादलों में छिप जाता है मगर चांदनी का एहसास हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल के आंगन को रोशन करता रहता है।

लगे तट मंद मंद गति चली जात वर्ष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वन अति प्यारे चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना गे तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वन अति प्यारे चंद्र चमक चपला से चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना गे तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत फिरकत चलत बांक चित वन अति प्यारे चंद्र चमक चपला सी चमकत चंद्र मुखीरा।

देव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम।

0: अभी आपने सुना श्री विट्ठल कुमार राजपुरा का पखावज पर बजाया झत्ताल। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे थे श्री जगदीश बारूट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: यू जस्ट हर्ड झत्ताल प्लेड ऑन द पखावज बाय श्री विट्ठल कुमार राजपुरा। He was accompanied on the sarangi for the lehra by Shri Jagdish Barot. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music
2: With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से विद्यार्थियों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से पहुंचे थे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य

0: बंदी प्रजनित गिद्धों का पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ಇದುವಾಗ ಶವಾಣಿ ವಿಜಯಪುರ. ಸಮಯ 11:05:10. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲಯದ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಜೈ ಹಿಂದ್.